हर त्या वह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पय जिन हर त्याया जी।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जा बुद कर

संकट सब टारे। ज्यों कल को इक बार त्यै है ताके काल निकट नहिं है। रक्षा हुई ताहि सब काला,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

संत टहल की बेला, यहाँ खाट चनो हर लाहा, गे बसन सुहेला। आओद कटे दिन सूरे नारे, मन गुर मिलका सुवारे रहाओ। एह संसार विकार संसे मैं करे हूँ ब्रह्म ज्ञानी, जिस ही जिगाए पियाए रासी अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बेहाजो, हर गुरते मन हे बसेरा। निज घर महल पावहो सुख सहजे,

काम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है स्वर्ग है नील है अनाद है अजय है आजाद है जन्म है वर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अभंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसलीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्य नमो देव देवे अपेक्षी पे भी नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणी नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ नृसंगी परमात्मा नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनम्य समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति वैपूते कलंकं बिना अनेक कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणी नमो अस्त्रपाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी परमी अभोगी अभोगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो स्वाह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधोर दर्द अगम ओघारता परम परम परमेश्वरम पुरुषपालम सदा सर्वदा सिद्धाता दयालम अशेदी अपेदी अनाम अकाम नमस् नमस् समस्तोपराजी समस्तस्तम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमार्थे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजसाजे नमो साहसाहि नमो महामाहि नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो परम सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग प्राण सर्वंग भोक्ता सर्वंग जोगता सर्वंग देवं सर्वंग भेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले

एवं प्रकाशे आनंदं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती संत प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है सदा समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न अल चिराग है कि काम करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करेंद है करीम उल कमाल है कि हुस्न उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवास है हरीफ उल सिकन है हिरास उल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय गनीम है समस्तुल जुबाय है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सर्व उल गुवन है हमेशुल रवन है तमाम उल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन उल जमा है अमी कुले मा है करीम उल कमाल है कि जूरत जमाल है कि अचल प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो विभूत है कि मैं तो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचल अनंग है कि मैं तो

उपमय पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्व स्व पंड जल थल महान दिस्व स्वयंतन भवन आत्र तत्र आसा जान बाहुई कैसदा ओंकार याद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबरे अकाल कर कर प्रणाम जित चरणा मन चित गाता जे जिना बातन चंद गातन रंज बातन टुट भंडारन ठट पार आड़ीठ धर्मत ढीठ कर्म अणबरण अनदाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है और काले है मनम खल खंडन है मह मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कलकारन है सर्वोबारन है तृतके धर्म है जग के करण है मनमानिय है जग जानिय है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजप अजप है अथप अथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजवाकृत है अमृतामृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पापंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो ते तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सुताम संशांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे

कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशासे नमो बंक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अकामे वाहेगुरु अपंगी स्वरूप।

गुरु गरीब निवाज एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हादर रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब है तुम का बहु आप हादय मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवार सेव सिख सब

आप हाथ दे मुझे उबरी है मन काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले मोहे रखना

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलवित सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप है।

सुने गुंग जो याहे सुरसन पावई, सुने मूड चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निक न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर सहस फुनतीन कहित जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

शास्त्र वेद सब वैव भेद कहें हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो दोहरा।

पुन पाप विचारने ततै सार न जानी ततै सार न जानी बूबा जह ततै सार न जानी तेहिगमी संसार भ्रम सुता सुतिया रहन बिहानी गुर कृपा ते सेजन जागे जिना हर मन वसिया बोलहै अमृत बाणी कहै नानक सो तत पाए जिसनु वंदन हर लिव लागै।

पौड़ी शिव की संतो की जिन सचो सच थ्याय उन्हें मंदे पैण रखियो को शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़ा बनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला ने ते वचड़ा सवाया वडियाई वड्डा पाया वडियाई वड्डा।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझिन सच्चो सच वरताया, जिस तू देह तिसमिलस तात ने हच कमाया, सतगुर मिलस पैन के हृदय सच वसाया, मूरख सचन जानन मन मुख जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे।